0: run is imminent.
1: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through.
0: The U.S. president has been speaking at the White House. Earlier, he threatened more intense bombings if Tehran didn't agree. It could mean restrictions are lifted by both sides at the Strait of Hormuz. Airlines have cancelled just over 13,000 flights this month. Analytics from Cirium's data comes as jet fuel costs soar due to the war in the Middle East. Parents in South Wales are being urged to check their kids are washing their hands properly after a hepatitis A outbreak in Barry. Public health officials say cases in several households suggest the infection could be spreading. Vaccines are being offered to close contacts and families are told to seek medical advice for symptoms like fever or jaundice. Arsenal will face holders at Paris Saint-Germain in the Champions League final. The French side drew 1-1 with Bayern Munich in Germany, meaning they progressed 5-6 on aggregate. And Bonnie Tyler said to be recovering after being rushed to hospital for emergency intestinal surgery. Posting a story on the singer's Instagram account, her family revealed she's being treated by doctors at her home in Portugal. They say the 74-year-old's surgery went well and are wishing her a full and swift recovery. That's the latest. I'm AJ Walsh.
2: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
3: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है? क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं? तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए. वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं, वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें. अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं. वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं. प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं. आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ. नंबर मत भूलिएगा 07977317760.
4: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस.
5: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
6: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
7: क्या आप अपनी fan following बढ़ाना चाहते हैं?
8: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
9: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
9: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
10: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम.
8: अभी कॉल कीजिए 01484549947.
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड.
11: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग.
12: आर यू पीपिंग टॉम?
11: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
13: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
12: Come up and see me sometime.
11: Case closed.
14: जागते रहना, जागते रहना.
15: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
14: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
15: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
14: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना. और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
15: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
14: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवरटाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें। रेडियो संगम पर एडवरटाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
3: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
4: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
5: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
3: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
2: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
3: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
6: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
5: अभी कॉल कीजिए 01484549947।
2: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
7: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
8: आर यू पीपिंग टॉम?
7: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू ड्रॉ माय ओन कंक्लूजंस। It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.
2: नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका। कबर का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कबर को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग, मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ। मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश।
0: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA, टेलीफोन 01924 466771, mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
10: Sukhaan de vich vasde o lo.

सा साढ़े वसन दिया जग देंदा सी तशबीहां जदों

हजूर पतझड़ मौसम लंघ गया माही आया फगन ते शाखा फुटिया पतझड़ मौसम लंघ गया माही आया फगन ते शाखा फुटिया भंवरे रक्स करन फुल टहकन।

0: घर मुसाफिर सब घर आ गए तेनू कौन नहीं देता छुट्टियां।
1: आपके कहने पे वो दोबारा हाँ।

हो मेरी नजर का महवर, मेरा दिल ये कह रहा है यही बार बार कैसर, ना सनम मिला मुझे कोई, अरे

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग
6: आर यू पीपिंग टॉम
5: सैडली इट वाजंट इन देयर सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: जागते रहना, जागते रहना।
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है। आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
9: स्टॉप! अरे वाह! पराठा स्टॉप?
8: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
8: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700

0: को हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM.
1: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
2: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
1: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
3: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
4: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
5: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स.
8: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
9: Abhi call kijiye 01484-549947.
4: Training will be provided.
10: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
11: Are you peeping Tom?
10: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
12: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
11: Come up and see me sometime.
10: Case closed.
4: नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को चखना है मौत का जायका. कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी, ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत, मजबूत, पायदार, आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और नहायत माकूल कीमतों के साथ. मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी पिछले 20 साल से आपकी खिदमत में पेश पेश.
8: हेड ऑफिस मदनी मेमोरियल्स, यूनिट 1, 154 ब्रैडफोर्ड रोड, ड्यूसबरी, वेस्ट यॉर्कशायर, WF13 2HA. टेलीफोन 01924 466771. Mobile 07971 092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.

0: संगम 107.9 FM
1: दिलों को मिलाने वाला।
2: ओ माँ जिदे पुत्र नू चंद सिक्कियां दी खातिर पुत्र दे यार ने वेच दिता, शबास चौहान दे कलम चो निकलिया उस मां दा वरलाप, कैसर चौहान दी आवाज विच आकाश सोनू दे सुरां ते।

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947.
3: Jagte rehna, jagte rehna.
4: So jaunga to kya hoga bhai?
3: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se red jaoge kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aalu ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha doner, paratha tikka aur iske saath साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
4: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
3: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
4: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
3: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
5: लॉक इट इन एंड रिप द नॉब ऑफ
6: एक्सक्यूज मी माय iPhone doesn't have a knob.
5: Radio Sangam, 87.9 FM.

दिन रात आपके साथ रेडियो संगम। अब वक्त हुआ जाता है अजान फज्र का, आप अपनी मकामी मस्जिद के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह।

0: दिन रात आपके साथ रेडियो संगम
1: ओ मां जिदे पुत्र नू चंद सिक्कियां दी खातिर पुत्र दे यार ने वेच दिता शबास चौहान दे कलम चो निकलिया उस मां दा वरलाप कैसर चौहान दी आवाज विच आकाश सोनू दे सुरां

0: को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM।
1: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
2: हाँ जी याद है।
1: चलो सुनाओ फिर। सोना चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: चांदी चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए।
1: कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: फिर से बोलो।
2: चाचा ज्वेलर्स।
1: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स। चाचा ज्वेलर्स।
3: केड़ी ऑफर लाइया वहाँ सानू भी तो दसो।
4: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर। यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू।
5: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE। टेलीफोन नंबर 01422342553। गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स।
6: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
7: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
10: यस, join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
11: Abhi call kijiye 01484-549947.
6: Training will be provided.
12: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
13: Are you peeping, Tom?
12: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
14: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
13: Come up and see me sometime.
12: Case closed.

0: दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM।
1: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
2: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
3: Are you peeping, Tom?
2: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
4: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
3: Come up and see me sometime.
2: Case closed.
5: Jagte rehna, jagte rehna.
6: So jaunga to kya hoga, bhai?
5: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sab se reh jaoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha tikka, aur iske saath saath thandi lassi, kadak chai aur special halwa puri.
6: Stop. Arey wah. पराठा स्टॉप
5: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
6: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
5: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700

0: हंसाने वाला दिलों को मिलाने वाला रेडियो संगम 107.9 FM
1: जदों दिन हशर ते सवाल होणगे जदों दिन हशर ते सवाल ओ गल्ला करन आलिया तू कहना पता अगे लगेगा मैं भी यही कहना पता अगे लगना है कदों जद

0: फिर तू चुप कर ले,
1: फिर तू चुप कर
0: ले। वाह कैंट वाले बड़े सुरीले ने, मैनू पता है।
2: जनता च जावेगी सवारी आप दी,
0: जन्नता च जावेगी,
1: जन्नता च जावेगी।
0: अच्छा अगली लाइन तुसी रल के पढ़नी, मैं चुप हो जाना।
2: जन्नता च जावेगी, जावेगी
0: जड़ी मुहार है,
1: मुहार
0: जड़ी मुहार उते बिलाले हबशी दे कंधियां ते होनी है ना अगे अगे।
2: जन्नता च जावेगी, जावेगी सवारी आप दी। हाथ चुक के कहना अगे।

0: जे कोई महफल ना हो कला ही महफल आके बह जाता है हुजूर ते दरूद पढ़ता रहता है दरूद पढ़ता रहता
1: है
0: भावे जुमे वाले ही हो इंशाल्लाह हाथ चुके
1: जन्नत च मुस्तफा दे नाल हो

0: अच्छा यासीन अजमल साहब जेड़े इन्हां ने लिखिया नौकर रोंदे ने बूहे खोल दिओ सरकार उस सब ने सुनिया पसंद कीता अच्छा इन्हां दे शेरां च ना बहुत ज्यादा किबला एक अकीदत दी इंतहा हुंदी है मुहब्बत दी इंतहा हुंदी है क्योंकि मैं इस बंदे नूं अक्सर यासीन अजमल चिश्ती साहब जिन्हां लिखिया सोहणा मदीने वाला और भी काफ़ी कलाम ने सोहणिया शान कमाल ने शेर जरा सुनना हर शेर सोना है लेकिन यह सुनो जरा
1: जदों दिन हशर दे सवाल होण गे हमी साडे आमीना दे लाल होण गे सानू बख्शवान लई सानू बख्श

0: Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
3: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन
4: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
5: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
6: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
7: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
5: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
4: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
5: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
8: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
7: Abhi call kijiye 01484-549947.
4: Training will be provided.
9: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
10: Are you peeping Tom?
9: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
11: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
10: Come on.

0: ना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
1: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
0: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहाँ पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवरटाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवरटाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
2: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
3: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
4: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
2: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
1: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं?
2: तो सुनिए, रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स।
5: यस, जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम।
4: अभी कॉल कीजिए 01484-549947।
1: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड।
6: आई हैव बीन टास्क्ड टू गेट टू द नेकेड ट्रुथ अबाउट सक्सेसफुल लोकल एडवर्टाइजिंग।
7: आर यू पीपिंग टॉम?
6: सैडली इट वाजंट इन देयर, सो आई पुल्ड आउट माय पेंसिल टू draw my own conclusions. It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
8: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
7: Come up and see me sometime.
6: Case closed.
9: Jagte rehna, jagte rehna.
10: So jaunga to kya hoga bhai?
9: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sabse red जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी।
10: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप!
9: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
10: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
9: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील, HD15HU, ओपनिंग सून। टेलीफोन 01484 542700।

0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549947. That's 01484-549947. क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
4: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484-549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
5: आई'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising
6: are you peeping tom
5: sadly it wasn't in there so I pulled out my pencil to draw my own conclusion It was broken, yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
7: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
6: Come up and see me sometime.
5: Case closed.
8: શું તમે ધૂમ્રપાન છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો? की प्लीज काउंसिल वेलनेस सर्विस तमने दरेक पगला पर टेको आपवा माटे कही छे जो तमे धूम्रपान छोड़वा माटे तैयार छो तो अमारी मैत्रीपूर्ण टीम मदद करी शके छे अमे धूम्रपान नी तृष्णाओ घटाडवा अने छोड़वानो सरल बनाववा माटे पेज वेप्स ने गम सहित मफत धूम्रपान बंद करवा माटे सपोर्ट प्रदान करिए छे धूम्रपान छोड़वाथी तमारा स्वास्थ्य मां सुधारो थाय छे तमारा परिवार नु रक्षण थाय छे अने खरेखर महत्वनी बाबतो माटे तमारा पैसा बचावे छे अने अमारा समर्थन थी તમે એકલા ધૂમ્રપાન છોડવા કરતા સફળતાપૂર્વક છોડવાની શક્યતા 3 ગણી વધારે છે શરૂઆત ઝડપી અને સરળ છે આજે જ cuckleswellnessservice.co.uk ની મુલાકાત લો અથવા 01484-234-0095 પર કોલ કરો Kirklees Council Wellness Service Kayam Mate Chudi Do.
0: इन जायकातुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
4: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 466-771 Mobile 07971-092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
9: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
10: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
9: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
10: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
9: Download the LEMFI mobile app today.
10: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.
11: Lock it in and rip the knob off.
12: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
11: Radio Sangam, 87.9 FM.
13: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker, and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam national and international news.
14: Sky News Centre at 7. Two people who returned to the UK from a cruise ship at the centre of a hantavirus outbreak have been told to self-isolate despite not showing symptoms. The UK Health Security Agency insists the risk to the general public is very low. The ship is now on its way to Tenerife, and Nika Alexander is from the World Health Organization.
15: This isn't a new virus. It has been around. We've known about it for a good 30 years now. Every year, there are a few hundred cases in some parts of the world, a few thousand in other parts of the world. So we, as in the collective health community, knows how to manage this virus.
14: Polling stations have opened in elections across much of Britain. Voters in Scotland and Wales will elect representatives to their national parliaments. Meanwhile, in England, 5,000 seats on 136 local councils are up for grabs. Peace talks between the US and Iran are said to be gaining momentum, with the White House reportedly close to doing a deal. Donald Trump insists Tehran's keen to negotiate and has threatened a higher level of bombing if no agreement is reached. The US president also confirmed last night that an American naval blockade of Iranian ports remains in full force.
16: The Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
14: Meanwhile, the US Secretary of State will meet the Pope later this morning with the aim of repairing relations with the Vatican. Leo's calls for peace in the Middle East haven't gone down too well with the US President. In sport, and Arsenal will face Paris Saint-Germain in the final of the Champions League in Budapest next month. The French side drew 1-1 with Bayern Munich last night, meaning they progressed 6-5 on aggregate. And Prince Archie is celebrating his 7th birthday today. Meghan, the Duchess of Sussex, posted on social media calling him a sweet boy. That's the latest. I'm Stevie Shillinglaw.
11: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
17: Fast Track Solutions, supporting communities around the globe.
18: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
19: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
0: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484 549947. That's 01484 549947. क्या आप अपना confidence level बढ़ाना चाहते हैं?
1: क्या आप 52 countries में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं?
2: क्या आप अपनी fan following बनाना चाहते हैं?
3: क्या आप technology को और सीखना चाहते हैं?
1: क्या आपको media में काम करने का शौक है?
0: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
1: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
10: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
3: अभी कॉल कीजिए 01484549947
0: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड
20: To sponsor Song of the Hour, please call 01484 549 947.

0: बच्चों कल का सबक याद है
1: हां जी याद है
0: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: चांदी चाहिए
1: हां जी चाहिए
0: कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
0: फिर से बोलो
1: चाचा जूलर्स
0: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहां से लोगे
1: चाचा जूलर्स
2: केडियां ऑफर लाईयां वा सानू भी तो दसो
3: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहां पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैसे से शुरू
4: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: जागते रहना, जागते रहना.
2: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
1: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
2: स्टॉप! अरे वाह, पराठा स्टॉप.
1: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
2: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
1: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
3: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
4: Are you peeping Tom?
3: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken. Yes, it was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
5: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
4: Come up and see me sometime.
3: Case closed.

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

कुछ गाने मुस्कुराहट लाते हैं और कुछ तो रुलाते भी हैं। आखिर उनका दिल से जो नाता है, ऐसे ही कुछ पल नसरीन के साथ, कभी खुशी कभी गम में, सवेरे 9 से दोपहर 12 तक, ओनली ऑन रेडियो संगम, क्योंकि ये दिलों को मिलाता है।

हाँ जी हाँ जी, मैं इतनी हूँ, मैं किधर भी नहीं गई, मैं किधर भी नहीं गई। देखिए मैं क्या सी ना आ जाने, दरवाजा खोलने में थोड़ी जी देर हो लग गई थी, माजरत चंदिया ब्रारुल हक जी। चलो आओ जी, बिस्मिल्लाह करिए।

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए 3000 पाउंड्स तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए 1000 पाउंड तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन
2: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
3: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
4: सिंस जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
5: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 6771 Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
6: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
7: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
10: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
11: Abhi call kijiye 01484-549947.
6: Training will be provided.
12: Chai chahiye to phir?
13: Go chai.
12: Kabhi bhi chahiye to phir?
13: Go chai.
12: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
14: Go chai. Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai. Serving the people's favourite, karak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste. Perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.

ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਪਰ ਉਹ ਵਸਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अली शाहिद तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहवांगी वालेकुम असलाम मेरे वीर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ तुसी कहंदे हो मेरा सलाम ते ढेर सारियां दुआवां जिन्ने भी रेडियो संगम दे सुनन वाले ने इन्हां सारियां तक पहुँचा देवो ते जी मैं हवा नूं कह दिता है कि तुहाडा सलाम हर हर का ते हर हर बशर तक पहुँचा दें जिथे तक रेडियो संगम की आवाज़ आती है भाई 107.9 ते 94.7 दिलों में मिलान वाला तुहाडा अपना रेडियो संगम तुहाडे नाल नाल हुंदा खुशियों विच भी गमां विच भी कोई साडा ईद शबरात कोई भी दिन हुंदा असीं इकट्ठे नाल नाल हुंदे हां और किसी मजहब का भी होए तो रेडियो संगम जड़ा वे ना कम्यूनिटी नूं मिलान वाला वे रिश्तियां नूं जोड़न वाला वे तो जी बिल्कुल तुहाडा जी पसंद का जड़ा गीत है ना वह मैं वेखनी हाँ जिस वेले मैनूं लभ जाएगा ना तो तुहाडे नाल अली शाहिद कर देवांगी अजरा जी साढ़े नाल नाल ने जी अजरा जी तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहवांगी तुहाडे सोहने सोहने गाने जड़े ने ना सारे तुहाडे नाल करदे रहांगे बस तुसी नाल नाल रहना है ते हरभजन मान दी सोहनी जिही आवाज़ की कहंदे ने पे तुहाडे नाल रल के सुनने आ

जी हर हर बचन मान दी सुनी जी आवाज पेशकश तुहाडे अपने रेडियो संगम दी थी 107.9 ते 94.7 तुसी भी किसे दे ना कोई पैगाम करना चाहते हो कोई दुआ देना चाहते हो कोई किसे नु मुबारकबाद देना चाहते हो जिंदगी दा कोई सोहना जिहा दिन ने सालगिरह वे एनीवर्सरी है कोई नन्ना मुन्ना निक्का जिहा मेहमानकार विच आ गया वे ते जी किसे दीआं खुशियां विच शामिल होया

करो, किसी के गमों में शरीक हो के उन्होंने गमों को घटाया करो। तो रेडियो संगम का पैगाम यही है जरा इंसानियत का पैगाम ने। नसीबो लाल कहते ने जो सिली सिली आँदी है हवा तो कितने कोई रोंदा होएगा, क्योंकि सिलियाँ हवावं तो इंज लगता कि ये अथरू किसी के शामिल हो गए हैं जो दिल तुहाडा कहता हो। बस ये गल् दिल दियां ने। तो सुनो जी, सारे रल के सुनने हैं। तो अली कहते ने कि जी, अली शाहिद ने कहा कि पंजाबी गाना एक सुनना मैं गुमसुम, तो जरूर करांगे।

नसीब लाल दी सुनी जी आवाज हैकमेंट पार्ट विच साढ़े नाल नाल ने जी किंग मिस्टर किंग मास्टर चवांगी तुहाडी टेलीफोन कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकी ड्रॉप हो गई वालेकुम असलाम जी व्हाट्सएप ते मौजूद हो तुसी अब्दुल कयूम जमाती तुहाडा भी शुक्रिया अदा करांगी

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना

0: कुछ गाने मुस्कुराहट लाते हैं और कुछ तो रुलाते भी हैं। आखिर उनका दिल से जो नाता है। ऐसे ही कुछ पल नसरीन के साथ, कभी खुशी कभी गम में, सवेरे 9 से दोपहर 12 तक, ओनली ऑन रेडियो संगम, क्योंकि ये दिलों को मिलाता है।
1: क्योंकि ये दिलों को मिलाता है। मैंने कंदी पे ये जी जड़े दस्ते सन्ना पे रेडियो संगम हो कंदे सन पे तुसी की कंदे जरूर दस यारे अब्दुल कयूम जमाती साढ़े नाल ने वालेकुम असलाम ते बहुत सारिया दुआवां तुहाडे वास्ते। तुसी अज जी फ्लाय करना वे इत्थों ते तुहाडे वास्ते बहुत सारिया दुआवां ने। अज शाम नूं तुसी पीआईए जी साडी अपनी एयरलाइन ते तुसी चले हो कश्मीर अल्लाह खैरा नाल लै के जाए ते खैरा नाल वापस आओ ते जिस मकसद वास्ते चले हो रब दी जात तुहानूं कामयाब करे ते खुशियां ते कामयाबियां नाल तुहाडे कदम चुमदियां रहन। जिस मकसद वास्ते चले हो अल्लाह आसान करे उहनूं। ते शुभाना जी कहंदे ने जी मेरा लौंग गुआचा, ध्यान करना सी किस तरह गुआचा। सोना अजकल एडा महंगा वे ते बुढ़िया नूं शौक एडे ने कि कोके भी पाने ने ते डायमंड दा भी पाना है ते रूबी दा भी पाना है ते फलाना भी पाना है ते टमकाना भी पाना है ते फिर गुआच गया ते किड्डा नुकसान हो जांदा है। चलो जी शुभाना जी जरूर तुहाडे नाल करांगी। ते अली शाहिद मेरे नाल नाल ने जी ते तुहाडी पसंद दा आवाज़ जिहड़ी है ना राहत फतेह अली खान दी आवाज़ विच तुहाडे नाल कर दिंदे हां जी।

जी बिल्कुल जी मेरा लॉन्ग गुआचा शुभाना जी तुहाडे नाल करना चाहवांगी तुहाडी पसंद दी ए आवाज ते रिफा जी तुहाडे नाम ही कर दिता अपने नाम ही डेडिकेट कर दिता जज़ाकुमुल्लाह खैरन तुसी साडे नाल नाल हो

9:46 जी मेरे वीर किंग जड़े बड़े खलूस दे नाल प्रोग्राम में शिरकत की बड़ा चंगा लगता है जड़ा गाना तुसी सुनना चाहिए ना सयोनी मेरा दिल तड़के ओ कोई नहीं जल पिया लेकिन सयोनी नूर जहां दी आवाज तुहाडे नाल करने आ ते आन वाले दिनां विच कोशिश करांगे कि तुहाडी पसंद दी आवाज नू प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाए

मेरी बड़ी ही चंगी जी भैन बड़ी दूर होंगे ने जी लंडन तो भी अगे हमेशा साथ निभाते हैं अज बड़े दिन बाद तुहाडे नाल गल हुई मिसिस चौधरी बहुत अच्छा लगा तो यही आवाज तुहाडे नाम ही चलो कोई नहीं हो जाया करता है कभी कदार इंज भी हो जाता है तो कोई गल नहीं असं इतने ही मौजूद हाँ तुहाडी पसंद की आवाज़ नूं पूरी दी पूरी तुहाडे तक पहुँचावांगे जी

0: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं? The Kirklees Council Wellness Service हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है। अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद, पैचेस, वेप्स और गम फ्राहम करते हैं, जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है। तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है। और हमारी मदद से आप तीन गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं। तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है। अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484-234-095 Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ो।
1: जागते रहना
2: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
1: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे, क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज्जा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी।
2: स्टॉप, अरे वाह, पराठा स्टॉप।
1: हां ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना, क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट।
2: बस मैं अब नहीं सोऊंगा।
1: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हडर्सफील्ड, HD15HU, ओपनिंग सून, टेलीफोन 01484542700।
3: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें। यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट। रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें, रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं। Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

जी आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे। हाँ जी हाँ जी 107.9 94.7 दिलानु मिलान वाला थोड़ा अपना रेडियो संगम। तो शुभाना जी कहते ने जी सुनना वे तुसी सुन वंजली दी मिठड़ी तान जी पंजाबी दा प्रोग्राम है। मैडम नूरजहां दी आवाज़ तुहानु सुनवाने आ पे वक्रे वक्रे जी जिहड़ा तुसी सुनना चाहोगे तुहाडे नां दे नाल जुड़ांगे जी। तो सजना है महफिल असा तेरे लई सजाई है। मसूद राणा दी आवाज़ नदीम ड्यूसबरी तो कहते ने मैं ओ वाला वही आवाज़ सुननी है तो क्यों नहीं मैं सुन तुहाडे नाल करांगे। नदीम सुनदे रहा जे मसूद राणा दी आवाज़ बिल्कुल तुहाडे नाल दे नाल जोड़ के तुहाडे तक पहुँचा दी जाएगी। तो मैडम जी की आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करांगे।

जी मैडम जी पे कंजेशन मैं तो हो गई कुर्बान तो चलो जी मैडम जी की गल मैडम जी के नाल सी तो नदीम कहने ने ड्यूसबरी भी चिन्हें कहने ने कि सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए तो चलो जी नदीम जी तुसी महफिल सजाइए तो इन्हों की सोहनी जी आवाज़ कर दें

फिल्म चू मंत्र दा सुना जा गाना ते नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा किड़िया सोनिया गल्ला ते सच्चिया गल्ला हकीकत सी इन्ना गल्ला विच ते सुनना चाहिया सी सोनी जी आवाज नू अली चाहित तुसी तुहाडी पसंद दी सोनी जी आवाज प्रोग्राम विच शामिल कीती ते जी तुहाडा सारेयां दा वी शुक्रिया अदा करना चाहवांगी। एक होर सोनी जी आवाज शामिल करना चाहवांगे जिहड़ी सानू लैके चलेगी आई थिंक हाँ जी आई एम नॉट श्योर लेकिन लेके चलेगी सानू छोटी जी ब्रेक वाल जड़ी के न्यूज़ ब्रेक होएगी।

107.9 FM पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए। 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए। हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना।

गाने मुस्कुराहट लाते हैं और कुछ तो रुलाते भी हैं। आखिर उनका दिल से जो नाता है। ऐसे ही कुछ पल नसरीन के साथ, कभी खुशी कभी गम में, सवेरे 9 से दोपहर 12 तक, ओनली ऑन रेडियो संगम, क्योंकि ये दिलों को मिलाता है।

107.9 सैम जी साढ़े नाल नाल ने सैम तुहानूं वी खुश आमदीद कहांगे हमेशा जी तुसी सदा ही साढ़े नाल हुंदे हो असी जदों रेडियो ते हुंदे आ तुसी वी साढ़े नाल नाल हुंदे हो टेलीफोन कॉल ते वी गल हुंदी है व्हाट्सएप ते वी तुसी साढ़े नाल हुंदे हो अफशा खान दी सुनी जी आवाज़ 2025 दा गाना जे ते जी तुहाडे सारयां दे नां कर दित्ता

गुलाब दी सुनी जी आवाज ते सोना जिहा गीत भी है ना ते रेडियो संगम दी पेशकश है तुहाडे तक पहुंचाने आ पेजी रेडियो संगम 24 घंटे तुहाडे नाल नाल हुंदा वे ते सुनी जी आवाज तुहाडे सारयां दे नाल सुल्ताना जी साढ़े नाल नाल ने हडर्सफील्ड विच तुहाडी तबीयत ठीक नहीं सी ढेर सारियां दुआवां मेरी भैन तुहाडे वास्ते अल्लाह तुहानू सुखी रखे राजी रखे ते जी सेहत तंदरुस्ती वाली जिंदगी दवे

सनम भुलार दी सुनी जाई आवाज 1951 दी फिल्म मिट्टी दिया मूर्ता सदा बहार आवाज ते सदा बहार सुना जिया साथ तड़ा सारे आंदा तड़े सारे आंदे ना जोड़ के तड़े सारे आंदा कर पहुंचा दिता

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए 3000 पाउंड्स तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए 1000 पाउंड तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
2: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
3: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewellers.
4: सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
5: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 466771 Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
6: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
7: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
10: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
11: Abhi call kijiye 01484-549947.
6: Training will be provided.
12: Chai chahiye to phir?
13: Go chai.
12: Kabhi bhi chahiye to phir?
13: Go chai.
12: Din ko chahiye, raat ko chahiye, har waqt chahiye to phir?
13: Go chai.
14: Need a proper chai fix for when you're on the go? Skip the queue and head to Go Chai. Serving the people's favourite, kadak chai, creamy Kashmiri chai, coffee and much more. Made fresh at the touch of a button. Perfect taste. Perfect temperature and hard to beat on price. Available 24/7. Find Go Chai at your local petrol station. For exact locations, visit gochai.co.uk. Go Chai, proper chai, anytime.
15: 107.9.7 Dilano Milan wala toda apna radio sangam Punjabi da show ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਖੜਕਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ

नईम हजारवी की सुनी जी आवाज अली शाहिद तुहानू शो पसंद आया तो सारा का सारा शो तुहाडे नाल कर दिता सुल्ताना जी सुनियो तुहाडी पसंद की आवाज़ तुहाडे नाल कर दिती शबाना जी साडे नाल नाल ने उन्हां नूं ही जी उन्हां दी पसंद दे जिन्ने गाने सन नाल नाल सुनांदे रहे तुहानू मेरे किंग वीर जी तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहवांगी सैम साडे नाल नाल ने सैम सारे गाने तुहाडे नाल ही कीते जिशान तुसी जड़ा गाना क्या सी उर्दू दा सी पर तुसी जवाब ही नहीं दिता अगर तुसी मैनू पंजाबी दा गाना भेज दे ते मैं जरूर तुहाडी पसंद दा गाना भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर दी अब्दुल कयूम जमाती साडे नाल नाल ने तुहाडा भी शुक्रिया अदा करना चाहवांगी जहूर हुसैन मुगल जी तुहाडा भी शुक्रिया अदा करांगी नदीम ड्यूजबरी विच तुसी भी साडे नाल नाल हो अजरा जी साडे नाल नाल मिसिस चौधरी तुहाडा भी शुक्रिया अदा करना चाहवांगी हैलीफैक्स विच अजरा जी तुहाडा सारेयां दा शुक्रिया जी तुसी कोशिश की लेकिन प्रोग्राम विच बिल्कुल जी शामिल नहीं हो सके चलो जी कोई गल नहीं आज दा प्रोग्राम पंजाबी दा प्रोग्राम सी कल जुमा दा दिन ते एक बारी फिर तुहाडी ते साडी मुलाकात हां जी अल्लाह दे हवाले कर देने पे जी तुहाडा सारेयां दा शुक्रिया जिन्हां ने बड़ियां मुहब्बतां दित्तियां प्रोग्राम विच शामिल हुंदे रहे ते एहसास दवांदे रहे कि तुसी साडे नाल नाल हो एही मुहब्बतां ने तुहाडियां सारेयां दियां जी जिंदगी वफावां करदी रही ते मुलाकात कल फिर होएगी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जी बिल्कुल होएगी जुम्मा दा दिन ते तुहाडी साडी मुलाकात दा दिन हुंदा ते फिर बिल्कुल मिलांगे

जी कल इंशाल्लाह ताला जुमे दे दिन तुहाडी ते साडी मुलाकात दा दिन हुंदा सुबह 9 बजे हाजिर हो जावांगे अपने पसंद दे गाने जिहड़े तुसीं सुनना चाहो जरूर याद करवाया जे जरूर भेज दिया जे ते उहनां नूं अपने प्रोग्राम विच शामिल करके मैनूं खुशी होएगी मस्त कलंदर शो पसंद करन वालियां दे ना करांगे ते एदे नाल ही तुहाडे कोलों चाहांगी इज

107.9 FM रेडियो संगम की नशियात साथियों आप सुन रहे हैं, मैं हूं आसमा मुगल, अस्सलाम वालेकुम कहती हूं आपको और उम्मीद करती हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे मेरी आवाज़ ने आपको खैरियत से, अच्छे से और खूबसूरत दिन के स्टार्ट से पाया होगा। और नसरीन साहिबा हवा के झोंके की तरह आई चली गई, अब मैं आपके लिए खुशबुएं फैलाऊंगी और ये गीत भी यही कुछ कह रहा है ऑलमोस्ट प्रोग्राम का पहला गीत कि कभी खुशबू कभी झोंका। नसरीन जी बहुत शुक्रिया आपका। अब अगला साथ जो है साथियों आपका और हमारा अब से लेकर 3 बजे तक रहेगा। और एक और हस्ती भी मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में जो के आपके लिए सरप्राइज आवाज होगा।

0: आज भी हलचल मच जाती है साथियों और उम्मीद करती हूं कि इस प्रोग्राम में भी आप थोड़ी सी हलचल महसूस करेंगे आवाजों के सहारे और आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते क्योंकि हमारे जो प्रेजेंटर मेहमान प्रेजेंटर हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी जरा जल्दी में हैं और चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी हमारे लिसनर्स के साथ इनकी बातचीत हो जाए अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम I'd also like to say greet our listeners as well अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल
0: और आपने पहचाना आवाज कौन है
1: नॉर्मली जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं पूछता हूं लिसनर्स से मैं पूछता हूं कि आवाज तो आपने पहचाननी होगी अगर मेरा क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा स्पेशल होता है
0: what a line actually
1: yeah agar agar nahi pehchana to I am Saj Malik normally I have a show with Mubasit on a Tuesday usually on a Tuesday
0: can you tell
1: midnight.
0: The full name today
1: Saj Malik
0: No, Saj is the short of your name.
1: Sajid Malik.
0: Sajid Malik.
1: Yeah. Sajid Malik.
0: You know, it's that effect of your name.
1: Yeah.
0: It is.
1: It does have an effect.
0: It does, yeah. On your personality, work, on your relationship, everywhere. Yeah, now you will say the full name because I said the relationship.
1: Yeah. Well, they do. In our culture, we do believe the name has an effect because you're constantly repeating that name and what us naam ki jo energy hoti hai na
0: energy
1: aap us you're sending
0: knocking on
1: yeah you're sending that energy to that person
0: yeah.
1: So that's why we always say it's important to choose a good name something with a good meaning ki hopefully it will take effect you know on that person
0: Definitely.
1: Or have some effect on that person or that personality you know on the character the energy the aura
0: yeah wo built up hota hai na
1: ji bilkul yeah
0: so Sajad. No, Sajid.
1: Sajid, yeah.
0: Sajid. Sajid. And your brother is Majid.
1: Majid, yeah.
0: Sajid. Okay.
1: Yeah.
0: Sajid. कैसे हैं?
1: I'm very good.
0: How is your morning today?
1: Yeah, very good.
0: Positive morning?
1: Positive and negative.
0: Negative.
1: Negative के गाड़ी खराब होगी, positive के garage में एक slot मिल गई.
0: दे दिया.
1: Yeah.
0: और वो ठीक हो रही.
1: Yeah. अभी तो मैं wait कर रहा हूँ. It's like I think you know for guys, मर्दों के लिए जो आपकी गाड़ी खराब हो ना बड़ा upsetting time होता है, very emotional time होता है.
0: Ladies के लिए भी बहुत. नहीं,
1: I think मेरे ख्याल में नहीं.
0: Is गाड़ी your first love then? I think. So.
1: Men love machines. We have this attachment to machines. I don't know what it is.
0: Ladies ki bhi hoti hai kyunki hamari to sari bahar jana band ho jata
1: hai. I think ladies ki jo hai kitchen machines ke sath zyada attachment hoti hai na.
0: No,
1: blending machine, grinding machine.
0: Meri to gaadi ke sath couple of months ago something happened to my car. I was so upset ki kya ho gaya. Jab tak sort out nahi hoti na.
1: I think it's because it throws you off track.
0: Huh.
1: And I think that upsets you and you feel like every
0: trap in the house.
1: Yeah, you feel like something's not right, you know. Mm-hmm. So because
0: it's a freedom, no?
1: Yeah, because we're so used to our cars and these
0: No, it's a freedom for the lady shopping janna hai kuch bhi karna hai you go you don't ask your husband and just
1: just
0: go with your friend.
1: Just go. I suppose it is freedom and being mobile. Being able to get out and go wherever you feel like whenever you feel like
0: you know with the permission of Farah our presenter
1: yeah
0: I will add this one that last week one day she rang me and she said what are you doing I said nothing and it was a lovely sun was out weather was a bit cold lekin andar se dhoop dekhe na to keh rahi thi ke okay you want to go somewhere and she had other sporty kind of car so both of us went somewhere on the lake side she took me and it was such a nice going through Halifax villages and wind was blowing
1: yeah that time movie scene lag raha
0: movie scene tha and I put my 60s kind of a scarf and she was wearing her hat on and everybody in the village you know the walkers on the they were looking two ladies sitting in
1: I bet they thought that's it we're gonna have some trouble here now
0: it was so nice honestly so car jo hai wo freedom hai aap enjoy karte ho apne friends ke saath bhi aur ladke bhi to enjoy karte hain friends ke saath
1: Of course, I think, you know, there's a saying in English, a man's best friend is a dog. And I can't say, no, English makes saying, yeah. And I really believe that a man's best friend is his car.
0: His car.
1: But thank you. Because in your life, when there's a situation, मेरे ख्याल में आई थिंक 99% ऑफ द टाइम गाड़ी जो है ना काम आती है
0: आती है 100% आती है लेकिन डॉग को इसलिए ये कहते हैं ना कि डॉग उर्दू की कहानी बचपन में हम पढ़ते थे कुत्ता एक वफादार जानवर है इज अ लॉयल
1: लेकिन गाड़ी भी बड़ी लॉयल होती है वफादार
0: होती है वो कभी भी बिगड़ जाए किसी भी जगह भरोसा नहीं
1: है नहीं पर ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिनका एक ना आई थिंक उनके अंदर ना एक कैरेक्टर होता है आई थिंक कार्स हैव अ सोल एज वेल लाइक सम टाइम्स आपने आई डोंट नो आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं लेकिन सम टाइम्स यू नो आपकी गाड़ी कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है और आप गाड़ी के साथ बात करते हैं यू टॉक टू द कार लाइक
0: एज इफ
1: हम तो लाइक से फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हम कहते हैं कम ऑन बेबी One more time, please, please.
0: No, you know? वो मेरी तो फिर भी नहीं सुनती अच्छा
1: I think कभी-कभी जो है ना गाड़ी सुन लेती हैं they have feelings and कभी-कभी जब आप आपने fuel नहीं डाला होता तो आप कहते हैं please come on give me one more mile you know
0: ऐसा नहीं हुआ
1: ऐसा नहीं
0: मैं हमेशा full करके नहीं करती
1: अच्छा आप you are a careful person yeah नहीं कभी-कभी हो जाता ना भूल भी सकते हैं
0: बस थोड़ा सा pat करो और ऐसे करो
1: तो ठीक होती है चुमी like a give a big kiss to the steering wheel
0: हां नहीं तभी तो पीछे से धक्का देते हैं वो चुनी वो एशियन स्टाइल ऑफ चुनी
1: अच्छा कुछ लोगों ने नाम भी रखा होता है गाड़ी का या कुछ हमारे लोग तो बसंती बहुत यूज करते हैं ना
0: बसंती
1: या मेरी बसंती लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो है स्पेशली इन इंग्लैंड अमेरिका स्पेशली एज वेल दे गिव अ नेम अ स्पेसिफिक नेम टू द कार एज वेल लाइक लूसी एंड लूसियल एंड यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ आई डोंट नो इफ पीपल डू दैट
0: सो डिड यू हैव अ नेम फॉर योर कार
1: आई डोंट एक्चुअली नो शेरपुत्र
0: शेरपुत्र
1: ओह इज अ मेल या डोंट नो एक्चुअली बोनेट खोल के देखा नहीं अभी तो पता
0: Did you know mechanical side of the car?
1: No, honestly, you know, me, I'm probably one of the few men that's not into football and not into cars. I used to be really into cars when I was a kid. When I was a young boy, I was really into cars. I could tell you all the makes and models, the specifications and stuff like that. And then I just kind of lost interest around.
0: That's face value,
1: aren't you? अब जो है गाड़ी मेरे लिए जो है ना एक इट्स जस्ट अ मशीन इट सर्व्स अ फंक्शन यू नो इट टेक्स यू फ्रॉम ए टू बी एंड दैट्स इट
0: लेकिन पता है सच एक टाइम पे ना मैं समझती थी कि जब यहाँ के स्कूल बच्चे होते हैं ना एएस लेवल ए लेवल तो समर हॉलीडेज में फ्री होते हैं और छोटी जॉब्स भी बाज़ुकात नहीं मिलती हैं अ पार्ट ऑफ कॉल ऑफिस और इस तरह ना तो उसमें ना अप्रेंटिसशिप कोर्सेज ऐसे मैकेनिकल साइड के होने चाहिए स्कूल की तरफ से मतलब कोई कंपनी जो है वो किसी स्कूल को भेजे के मतलब एग्जाम के बाद जो 2 months होते हैं
1: absolutely I think basic things
0: वो बच्चों की एज होती है ना उसमें सीखने की तो वो कभी नहीं भूलती जैसे मतलब कार का हो इलेक्ट्रिक का हो basic things in the house that your mom needs
1: yeah when you're a teenager you learn plumbing. A lot better Yeah.
0: Plumbing, all that.
1: I think basic things like changing oil, water, light bulbs.
0: वो मैं कर लेती हूँ.
1: अच्छा.
0: I know.
1: Light bulbs भी कर लेती
0: हूँ. Light bulb कर रही हूँ.
1: Really? That's very good.
0: With my old car, एक बार मैं लेकर गई तो उसने मुझे बताया मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी फिर उससे मैंने बल्ब लिए फिर मैंने रख दिए कि कभी भी हो तो अब मुझे पता है कि ये पार्ट खोल के तो बल्ब लगा देना. It's so easy.
1: That's really good. तो अगर टायरों में हवा भरनी हो तो ये भी कर लेते हैं आप
0: नो वो मैं कल करवा लिया है वो मेरे लोकल है ना
1: वो तो बस रियली इजी वो तो बड़ा इजी होता है
0: हाँ लेकिन पता है कौन उधर जाए पेट्रोल स्टेशन में
1: अच्छा टायर फिर आप मतलब आप टायर भी चेंज नहीं कर सकते
0: मैंने घर में रखा हुआ है
1: स्पेयर
0: नो पंप एयर का
1: अच्छा आप टायर व्हील चेंज कर लेते हैं टायर चेंज कर लेते हैं
0: इतना
1: टायर चेंज नहीं सॉरी टायर तो बड़ा
0: हार्ड होता है
1: आई नो नहीं बट व्हील तो चेंज स्पेयर व्हील अगर आपको चेंज करना पड़े
0: आई एम नॉट मचो
1: I think you're I do agree with you I think basic life skills
0: हाँ you know जैसे घर में plug change करना है electric का socket में कुछ है plug लगा देना है वो भी अब नहीं है इसलिए कितना
1: अब तो वो इतना होता नहीं change का क्योंकि they nowadays electrical products could they come with a disposable plug for safety I think
0: safety reasons
1: मैं तो करता था बचपन में लाइक व्हेन आई वाज लिटिल बॉय उसको खोल के प्लग चेंज करना तारों को वापस डालना स्क्रू करना
0: ये अर्थ है इसको डालना ऐसे ऐसे टॉकिंग अबाउट कार्स एंड जैसे कार खराब हो जाती है अचानक मूड ऑफ हो जाता है how about things, precious things in life?
1: Yeah.
0: If somebody ruined that, how a person can feel?
1: Yeah, I think I suppose everybody reacts differently. Every person has a different reaction, and I think it depends on what you hold dear as well. What's you know, what's dear to you, what's precious to you. So for some people, their car probably isn't that precious. For somebody, their I can't think of anything. Kitchen appliances, or it could be something sentimental.
0: How about the phones?
1: The mobile phones. Yeah, I think these days losing your mobile phone.
0: Is that life?
1: Yeah,
0: it's the whole life.
1: People have a heart attack. But I think also, what if
0: टीनेजर जब होते हैं घर में बहन भाई होते हैं भाई ने कोई चीज आपकी ले ली यूजुअली द माय फाउंटेन पेन होता था एक तो आई गेट रियली अपसेट because it was very dear to me when I passed high school exam. One of my brother's friend, they gave it to me, a little small Quran and the pen when I entered the college. So that was upsetting when I see I am not at home and somebody else was using it. But that was kind of a teenager thing. Or is waqt तो अब हम होशियार हो गए हैं हम किसी को बताते ही नहीं हमारी डियर चीज कौन सी है
1: yeah.
0: अब हम नहीं बताते
1: I think if somebody else destroys something that's प्यारी to you that's very inconsiderate
0: yeah वो देखो लाइफ में अगर आपके कोई अच्छी चीज अच्छी बात हो रही है तो मैं समझती हूँ ये भी एक किस्म का ruining है कि वो कोई और person जो आपसे jealous हो रहा है he can spread the bad words about you And ruin your good name.
1: Reputation. Yeah.
0: That's,
1: definitely. Yeah. Yeah. Social media is very easily done. Oh, yeah, to ruin somebody's
0: There is a name for that. You know, a couple of English ladies, they come, appear on social media and their life's been ruined because of the social media.
1: Yeah.
0: People were giving them bad names and jaise wo nahi hote taunt karna
1: this
0: and that but I think ki aaj kal jo log hai na wo bhi ek doorway khol dete hain sab kuch logon ko apna ghar everything dikha dete
1: hain and then apni jo personal information
0: and then they cry on it why if you open up like a door to somebody and invite those people inside your house Obviously, they will see your house, your property, your private things in the house. So it's exactly the same thing. Why you moan about it?
1: Yeah, I think when you're using social media, you should be careful about what you share with people. I think it's different if it's people that you know, but then you've got people from all around the world and people that you don't know, maybe strangers, and they know exactly what's going on in your life. And these days, people use it. It's so easy because you're behind a screen. You could be anywhere, anybody in the world.
0: लेकिन पता है सर हर नई चीज जब भी दुनिया में इंट्रोड्यूस होती है एक जमाने में जो रिटन मीडिया था प्रिंट मीडिया तो वो भी बाज़ लोगों के लिए बड़ा अजीब सा था कोई किसी एक्ट्रेस की ड्रामा वाली की टीवी वाली की कोई पिक्चर आ गई पेरेंट्स देखने नहीं देते थे बच्चों को कि हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे नो ऑनेस्टली ऐसे होता था प्रिंट मीडिया में एक टाइम पे ना तो जब भी कोई नई चीज होती है तो लोग हाइपर हो जाते हैं दे वांट टू यूज इट एंड नाउ देयर they are earning money on those things actually and that's even more dangerous ke ab to kamai ho rahi hai in galat cheezon
1: yeah ye jo prani magazines thi ek hoti thi cineblitz yaad hai
0: right
1: cineblitz yeah. I think that was indian
0: right
1: pakistan ki bhi I think hui hogi
0: yeah
1: it must be something I remember my mum used to read journals not journals sorry novels she's and digest you know what digest
0: suspend digest or khwateen digest Reader's Digest is still exists
1: that's an English one I think English, Reader's English, Digest very popular you know you mentioned something just a few moments ago about your pen when I was a kid I used to love fountain pens and I had two pens that I loved, absolutely loved. One was a Schieffer brand. Have you heard of Schieffer?
0: Schieffer, yeah.
1: And one was
0: that
1: a Parker.
0: That was my first present from my husband.
1: Was it? Oh, that's nice. Yeah, Schieffer pens were really nice.
0: I pass it on to my daughter now.
1: Yeah, really?
0: It's two set of pens.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: I had the...
0: One was ink one and yeah. one was ballpoint.
1: Ah, yeah, the ballpoint was mm-hmm. nice. Well, I think yeah. that was the...
0: 80s.
1: Yeah, there was thing. A Parker. Was it Parker?
0: Parker.
1: They had numbers, I think, didn't they, as well?
0: Yeah.
1: I think Parker 5 was the ink fountain pen. Mm-hmm. I think that's the one I had.
0: Right.
1: And I had a Schieffer one with a... It had like a matte finish. Mm-hmm. I think I've still got that one, actually. And my Parker 5 got stolen from my pencil case at school.
0: Oh.
1: I was heartbroken, yeah. It was really upsetting.
0: Yeah, that time.
1: Yeah, and I remember... Do you remember the... they used to have cartridges. You used to put the cartridge
0: ink cartridge. Yes, yeah.
1: You know. They used to have a really unique smell as well. I remember, yeah. I don't know if you...
0: You can buy them now in a pack, but I don't think so anybody used them.
1: No, I don't think anybody uses pen and pencil
0: anymore. But
1: it's
0: lovely.
1: Yeah, it is, I think. And that's one thing I always wanted to improve about myself. Mm-hmm. My handwriting. Writing skills are not that good.
0: Okay, talking about pens.
1: Yeah.
0: जो भी हमारे listeners सुन रहे हैं, अब रेडियो संगम पे हमें खत लिखा करें instead of phone calls or WhatsApp. खत लिखा करें. Parker pens.
1: But it was so nice writing with a pen, with a proper ink pen, fountain pen, you know, and even pencil. But now everything's digital. We use emails. To write letters, we use text messages.
0: आप ये देखें कि text messages में आखर में ना last में everybody my ladies friends बच्चे नहीं करते हैं actually they don't do ऐसे heart बना के two crosses kisses लेकिन जब आप उर्दू में लिखते हो या English में you put words to those things. You don't put heart.
1: You mean emojis?
0: Emojis.
1: Yeah, yeah.
0: तो टेक्स्ट मैसेजेस में यही कुछ होता है ना लेकिन जब आप राइट करते हो ऑन अ प्रॉपर पेपर राइटिंग पैड्स होते थे लेटर्स के प्रॉपर खुशबू वाले नाइस उनके तस्वीरें तो आप प्रॉपर उन इमोशंस के ना वर्ड्स लिखते थे एंड दे आर सो मीनिंगफुल
1: Yeah.
0: कि किसी ने इतना
1: नहीं लेकिन जब आपने अगर आपने कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है कभी कभी इमोजीज की जरूरत पड़ती है
0: हाँ नई चीज है करें लेकिन अब
1: नहीं, जैसे वो एक वो लाफिंग फेस है हा हा हा वाला अब अगर आप बस हा हा लिखे उसको इट डजंट डिलीवर द सेम इम्पैक्ट
0: नो वो हा हा नहीं लिखा जाता उसको कहता है उसको कैसे लिखा जाएगा कि आपने मैं इतने दिनों से हंसा नहीं आपने मुझे दिल की गहराइयों से हंसाया मुस्कुराहट लाई मेरी चेहरे पढ़ने वाले का दिल भी खुश हो जाएगा
1: मैं गिर गिर के हंसा
0: गिर गिर के हंसा लेट लेट के हंसा
1: नहीं कोई लाइक वो जो हार्ट ब्रेक वाला इमोजी है यू नो जब आप वो देखते हैं आपको कुछ फीलिंग होती है
0: वो तो पहले भी लोग लेटर्स में ऐसे हार्ट और बीच
1: ड्रॉ करके
0: क्रैक ड्रॉ करके भेज देते थे ना दैट वाज ओके कि खुद ड्रॉ करते थे ना दे टेक द टाइम टू ड्रॉ द प्रिसाइज लाइंस
1: लेकिन डू यू थिंक इवन दो वी हैव सो मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ बट स्टिल वी आर सो डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर Human
0: there
1: beings.
0: Is a gap.
1: Yeah, human beings are so distant from each other.
0: So what's that gap? How to fill that gap?
1: I'm not sure. I don't know. I think I would say more communication. Lekin how much communication do we need more? We've got so much communication, you know.
0: Yeah.
1: But lekin we still don't understand each other. There's still a lack of understanding between communities. Between people, in relationships,
0: you
1: couples.
0: Know why? Because you know. Everybody is so busy on these different platforms of social media.
1: Mm-hmm.
0: We spent hours without acknowledging that I've been 2 hours on this page.
1: Yeah. नहीं लेकिन मेरा मतलब है कि हमारे पास इतनी communications के इतने तरीके हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को understand नहीं कर सकते
0: नहीं इसलिए कि हम फजूल चीजों के ऊपर इतने आवर्स लगा देते हैं ना इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के व्हाट साज फील्स व्हाट आयशा फील्स तो पहले ये होता था कि कम्युनिकेशन गैप ऐसे फिल होता था यू मीट दैट पर्सन लैंड लाइन से फोन कॉल होता था दैट वाज समथिंग
1: या आई थिंक मे बी वी जस्ट डोंट यूटिलाइज प्रॉपरली या
0: Mm-hmm.
1: Yeah, because look, you can talk to somebody around the world now
0: mm-hmm.
1: in okay. a few seconds.
0: Okay, we are going on a small commercial break.
1: Okay,
0: साथियों कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और फिर आपके साथ
1: कम्युनिकेट करते हैं
0: और गैप नहीं होगा फिर हमारा बिल्कुल नहीं होगा
2: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
3: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com द सेफ डिपॉजिट फॉर ऑल योर वैल्यूएबल्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर्स सेफ सिक्योर डिपॉजिट बॉक्सेस इंश्योरेंस कवर अवेलेबल 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फ्री इंश्योरेंस 24/7 अलार्म एंड कैमरा मॉनिटर system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road Halifax HX14NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre Halifax inside Chacha Jewelers.
4: Jagte rehna. Jagte rehna.
5: So jaunga to kya hoga bhai?
4: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain un sab se reh jaoge kyunki के पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
5: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
4: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सेलेक्ट
6: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
4: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
7: लानिका
8: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानिका कौन है
7: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानिका रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
8: अच्छा लानिका वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं
7: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
8: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
7: कंजूस कहेंगे
3: उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99 फ्राइडे टू संडे $24.99 अंडर 10s $11.99 and under 4s free.
8: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए.
7: क्यों नहीं? वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं. जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं.
9: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

0: ऐसे फील होता है
1: ऑफ कोर्स
0: जो कि होता है
1: या
0: जो कि होता है
1: या यहां पीपल कंट्रीज पीपल इनवेड कंट्रीज एंड टेक ओवर योर लैंड टेक ओवर योर होम
0: नहीं अपने कंट्री के लोग जो जिनके हवाले आपने की चीज वही कर लेते हैं कब्जा तो फिर दुख दुख होता है ना
1: ऑफ कोर्स सो आई थिंक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज में बहुत होता है सो लाइक जो लोग पाकिस्तान छोड़ के यहां आए हैं and they come here to build a life make a life un logon ne jo properties li hui thi pakistan mein un pe kabza ho jata hai sometimes it's on your own family members
0: oh yeah woh hi karte hain bahar wale ko kya pata hai kiski hai aur baazu ka ye bhi hota hai na jo log 60s early 70s mein aaye the unhone back home properties parents ke liye banayi usme koi dusre bhai rehne lag pade to phir jab ये बूढ़े हुए इधर इनको ख्याल आया कि वो तो हमारी प्रॉपर्टी हमने पैसा लगाया पेरेंट्स चल बसे दुनिया से तो जब ये वापस चाहते हैं देयर इज नो पेपर वर्क पेपर्स के ऊपर कोई इनकी डीड्स नहीं है प्रॉपर्टी की कुछ नहीं है तो वो कैसे वापस देंगे कि पास 40 50 इयर्स से वो रह रहे हैं आगे उनकी थर्ड जनरेशन वहां ग्रो हो रही है
1: सो पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम नहीं है ना
0: नहीं है
1: बिल्कुल नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सो आई एम नॉट फैमिलियर विद इट सो
0: देयर इज लेकिन आउट ऑफ लव बाज़ुकात लोग ये काम बहुत से लोगों ने किया था ना पास्ट में ऐसे के पेरेंट्स हैं उनके लिए नाइस हाउस बनाए साथ में
1: डीड्स की जरूरत ही नहीं थी फिर
0: डीड्स बस
1: देयर वाज नो नीड फॉर देम वाज
0: बस ऐसे जैसे होता है ना कि वर्ड ऑफ माउथ ये कह देना ही बस काफी होता था उस जमाने में वो बिलीव करते थे ना कि बस ये कह दिया तो हो गया
1: बस हाँ just to honor your word
0: yes
1: hello what do you think about people that break promises अभी हम बात कर रहे थे कि you know when you destroy something precious but or break something but what if you break a promise
0: you know in these days I heard so many people they change the name of promise convenience अपनी convenience के लिए जब वो टाइम आता है कि कोई दूसरा कहता है कि आपने तो इस काम का प्रॉमिस किया था तो जस्ट चेंज द नेम ना वो कहते अपनी कन्वीनियंस के लिए कि वो उन्हें अब सूट नहीं करता जो उन्होंने कहा था तो वो ये काम अब उसके दूसरे का वो फुलफिल करें अपना प्रॉमिस इन्हें सूट नहीं करता अब तो फिर वो प्रॉमिस का नाम चेंज हो गया ना कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है वो नीड नहीं रही है अब तो वो प्रॉमिस प्रॉमिस रहता ही नहीं है चेंज टोटली डायरेक्शन कहें या प्रॉमिस का जो नाम है उसको ही बदल दिया
1: आई थिंक समटाइम्स पीपल डोंट वैल्यू प्रॉमिस एज वेल सो इफ यू मेक अ प्रॉमिस टू समबडी यू शुड ऑनर दैट प्रॉमिस है ना
0: भूल जाते हैं
1: या बट टाइम्स आर चेंजिंग आउट देयर But in the old, when I say olden days, I don't know. It could be any sort of era.
0: 19.
1: Where even up to I don't know. I think maybe 20 years ago, 30 years ago, people used to honor promises and vows. And ab jo hai promise ka jo vada jo hai uski to koi value nahi rahi.
0: Sirf gaano mein hai. गानों में भी शिकवे होते हैं तूने वादा किया
1: नहीं जो वादा किया वो निभाया नहीं
0: हाँ तो वहाँ भी गिले शिकवे होते हैं मतलब ये तो पुराने गाने लता जी के आशा के मोहम्मद अली साहब के तो मतलब 50s में भी ये कुछ होता था
1: so maybe it's never been there maybe we just you know idealize things as well
0: हाँ वही ना वादे को पोइट्री में ले आए उसको एक और शक्ल दे दी कि वादा तो होता ही तोड़ने के लिए है कि वादा करो और पूरा ना करो तो होता ही इसलिए है
1: तोड़ने के लिए होता है
0: हाँ तोड़ने के लिए होता है और ये दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा देखो ये अगला गीत ही साथी कुछ ऐसा ही ले जाएंगे
1: हाँ लगा दे yes it suits the topic
0: हाँ

0: £1 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Hajish Gill anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Muhammad Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: जागते रहना जागते रहना
4: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
3: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
4: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
3: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
4: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
3: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
5: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirklees wellness service.co.uk Kirklees Council Wellness Service Hamesha ke liye tambaku noshi chhodi
6: Thinking about quitting smoking the Kirklees Council Wellness Service is here to support you every step of the way If you're ready to stop smoking our friendly team can help We offer free stop smoking support including patches vapes and gum to help reduce cravings and make quitting easier Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleeswellnessservice.co.uk or call 01484 234095 today. Kirklees Council Wellness Service. Quit for good.
7: I'd been tasked to get to the naked truth about successful local advertising.
8: Hey, you peeping Tom.
7: Sadly, it wasn't in there. So I pulled out my pencil to draw my own conclusions. It was broken, yes. It was pointless. Then it hit me. Advertising on this local radio station's the answer. It's low cost, effective, and memorable.
9: To advertise here on Radio Sangam, click on radiosangam.co.uk, then advertising.
8: Come up and see me sometime.
7: Case closed.
10: Roton ko asane wala, dilo ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.

0: phone doesn't have a knob.
1: Radio Sangam, 87.9 FM.
2: Radio Sangam, available on 107.9 FM, 94.7 FM, on DAB Digital, online, on smart speaker, and on our dedicated app. Download it now. On the hour, every hour, this is Radio Sangam National and International News.
3: Enter at one. Two people who returned to the UK from a cruise ship at the centre of a hantavirus outbreak have been told to self-isolate, despite not showing any symptoms. The UK Health Security Agency insists the risk to the general public is very low. The ship is now on its way to Tenerife, and Nika Alexander is from the World Health Organization.
4: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime. You know, for more than 2 months now, these innocent sailors and commercial crew members have been stranded out at sea.
3: Millions of people across Britain are casting their votes today. Voters are selecting councillors for 136 councils in England, while people in Scotland and Wales are choosing their parliaments. The US Secretary of State has arrived in Rome for talks with Pope Leo. Marco Rubio is on a mission to repair relations between Washington and the Vatican after the US President's repeated verbal attacks on the pontiff. Among other insults, Donald Trump's accused Leo of supporting Iran's nuclear ambitions. Alistair Bunkle is in the Vatican City.
5: This really is an extraordinary decision by President Trump. He's pressing pause.
3: Not the clip I was expecting there. Meanwhile, Israel has launched airstrikes on Beirut for the first time since a ceasefire in Lebanon was announced last month. Donald Trump's predicting the conflict in the region will end soon, as what he describes as very good talks have taken place. Meanwhile, train services are starting to return to normal in the southeast of England after problems with radio communications caused travel issues this morning. Network Rail says the issue has been resolved, but major disruptions still expected to continue. There are fears women are turning to unofficial medical advice online because their pain is routinely dismissed by doctors. Figures suggest more than half of women in the UK believe their problems are ignored by the medical profession. Last month, the Health Secretary promised to end medical misogyny. That's the latest.
6: Broadcasting to Huddersfield, Dewsbury, Batley, Birstall, Cleckheaton, Brickhouse, Elland, Halifax and beyond. This is your one and only Asian radio station. Radio Sangam, 107.9 FM.
7: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से राबता कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए 3000 पाउंड्स तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए 1000 पाउंड तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
8: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
9: क्या आप तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं द केकलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस हर कदम पर आपकी मदद के लिए मौजूद है अगर आप तंबाकू नोशी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है हम मुफ्त तंबाकू नोशी छोड़ने की मदद पैचेस वेप्स और गम फ्राहम करते हैं जो तंबाकू नोशी छोड़ने में मदद करती है तंबाकू नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है आपके खानदान की हिफाजत करता है और सबसे अहम चीज पैसे बचाता है और हमारी मदद से आप 3 गुना बेहतर तरीके से तंबाकू नोशी छोड़ सकते हैं तंबाकू नोशी छोड़ना बहुत आसान है अभी कॉल कीजिए या वेबसाइट विजिट कीजिए 01484234095 kirklieswellnessservice.co.uk Kirklees Council Wellness Service हमेशा के लिए तंबाकू नोशी छोड़ो
10: कुल नफ्सिन जायकतुल मौत हर नफ्स को चखना है मौत का जायका कब्र का कुतबा यानी हेडस्टोन बनवाना हो या कब्र को पुख्ता कराने का इरादा हो यानी क्रॉस राउंडिंग मदनी मेमोरियल ड्यूसबरी ग्रेनाइट और मार्बल से बने हेडस्टोन और क्रॉस राउंडिंग खूबसूरत मजबूत पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
11: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924466771 موبائل 07971092790 پلیز ریمبر برانچز ان برمنگھم مانچسٹر اینڈ شیفیلڈ آلسو
12: انسان بہت محنت بہت کوششوں اور لگن سے اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے کنیکٹ کریں یہاں پر آتے ہیں ہم یعنی ریڈیو سنگم کی ایڈورٹائزمنٹ ریڈیو سنگم کا بہت بڑا پلیٹ فارم یوز کریں ریڈیو سنگم پر ایڈورٹائزمنٹ کریں اور اپنے بزنس کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
13: LEMFI means a quicker and safe way to send money.
14: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
13: LEMFI means a 10% cashback on transfers over £100 using code SANGAM.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
13: Download the LEMFI mobile app today.
14: LEMFI is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.

0: Hola.
1: साथियों, दिनों को दिलों को जोड़ने वाला मिलाने वाला रेडियो संगम आप सुन रहे हैं. वेलकम बैक आफ्टर 1 o'clock न्यूज़. और आपको अल्लाह हाफिज भी कहना है साज ने.
2: साज आप तो भी यही है ना?
1: हाँ जी, मेरे
2: आप तो भी आई थिंक 3 o'clock तक.
1: टिल 3 o'clock.
2: या हमें दे इजाज़त आप. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउिंग मी टू ज्वाइन यू ऑन योर शो एज अ गेस्ट. आई रियली अप्रिशिएट दैट. आई थिंक कभी कभी यू नो ऑन द रेयर ओकेजंस वी डू क्रॉस पाथ्स विद डिफरेंट प्रेजेंटर्स एंड इट्स नाइस. अच्छा होता है कि आप यू नो यू कैन शेयर आइडियाज एंड यू नो यू कैन इंस्पायर ईच अदर एज वेल. I do have a show today as well.
1: You be coming?
2: Yes. Right. I'll be coming back at I'll be back here at 3 o'clock. I have a Bhangra show.
1: So can you tell to our listeners why you are going?
2: Gari jo hai wo garage mein
1: taiyar
2: hogi hai ready.
1: Your beloved car.
2: Yeah, I'm going to go pick it up. Thank you very much. It was nice to see you and ab hamara jo hai waqt ho gaya.
1: Well,
2: वक्त पूरा तो नहीं हुआ मेरा. हाँ. अभी तो इंशाल्लाह बड़े काम करने हैं. बड़ी दुनिया देखनी है. अभी बड़े काम करने हैं.
1: Exactly. Yeah, लेकिन कितनी लाइब्रेरीज में जाना है.
2: Oh, yeah. कितने वादे तोड़ने हैं मैंने. yes, so I shall be back at 3 o'clock. I shall see you soon. Asmaji, very thank you so much, and inshallah, see you next time. Take care.
1: My pleasure. Okay, thank you very much.

वेलकम बैक साथियों, सुन रहे हैं आप रेडियो संगम। और बात करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी समझा जाता है। कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्मॉल कन्वर्सेशन, स्मॉल टॉक्स जो होती हैं वो जनरली उनको ड्रेन कर देती हैं, वो फील करते हैं। और एक सर्वे किया गया और उसमें पता चला कि जो लोग खुद परफॉर्म नहीं करना चाहते लेकिन उस जगह पर जहाँ पर भी लोग गैदर हैं, कोई महफिल है या वर्क प्लेस की जगह है, वहाँ पर वो दूसरों को देख रहे होते हैं, दूसरों की बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन वो खुद आगे बढ़ के कोई बात ना करेंगे और परफॉर्म ना करेंगे। तो इस वजह से जो बाज़ू का दूसरे लोगों की स्मॉल टॉक्स होती हैं कनेक्टिंग, किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो एग्जॉस्टिंग हो जाती है क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं होता। और ये सजेस्ट कर किया जाता है कि उस तरह के जो लोग हैं वो थोड़ा सा टेक पार्ट करें किसी कन्वर्सेशन में, चाहे अपने घर के बच्चों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो ज़रूर करें, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा। अदरवाइज़ उनके बहुत अच्छे स्किल्स हो सकते हैं, लाइफ स्किल्स बहुत अच्छी उनकी, और चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं जो कि वो पास ऑन कर सकते हैं दूसरों को, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो इस तरह के प्रॉब्लम को अपने लिए एक इशू बना लेते हैं कि वो किसी के साथ बात नहीं करते। और परफॉर्मेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आपको कुछ कह नहीं रहा कि आप परफॉर्म करें। देखिए, बच्चे स्कूलों में होते हैं, छोटी एज से ही उनको क्लासरूम में या प्लेज वगैरह होते हैं, स्टोरी टाइम होता है, कुछ बात करने का बचपन से ही उनको मौका दिया जाता है कि वो आएं और बात करें या अपनी जगह खड़े होकर कुछ ना कुछ बात कर सके। तो इसी तरह से बाज़ घरों में किचन टेबल के ऊपर कन्वर्सेशन होती हैं, बच्चों के साथ बातें की जाती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट करने का, कन्वर्सेशन को फर्दर ले जाने का एक स्किल जो है वो उनमें बड़े के बात आगे किस तरह से होती है। तो फिर जब वो बड़े होंगे हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, जॉब के लिए, तो उनकी जो सोशलाइज होने के जो स्किल्स हैं वो उनको वहाँ पे काम आएंगे। वरना ये होता है कि आपके जो स्किल्स होते हैं वो उसी हर जगह परफॉर्म करने का आपको मौका नहीं मिलता, या वो स्किल्स जो हैं आपको अपनी जॉब पर ज़रूरत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे वो स्किल्स जो हैं दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं। तो अगर आप दूसरे से कनेक्ट होने का आपको फ़न आता है, दूसरे से बात करने का तरीका आता है, तो फिर आप अपने स्किल्स जो हैं वो पास ऑन कर सकते हैं और इस तरह से दूसरे को भी फ़ायदा हो सकता है और कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ट अप होता है।

0: दिन रात आपके साथ रेडियो संगम
1: मैं के जी दरवाजा ते खोलो
2: हाय हाय एने सारे बैग किनु लूट ले आजे ये किथे डाका मार रहे हो जोगी जी
1: ओ जी वास्को डे गामा ने ते अमेरिका डिस्कवर कीता सी ते मैं आज हडर्सफील्ड विच गोश्त दी दुकान लब ले आया
2: है एने सारा गोश्त चिकन कीमा किथु ले आयो
1: खादम सुपर से बर्कवी दे अंदर हाजी सोबत मीट एंड चिकन वाले पलिए लोके साफ सुथरी दुकान फुल्ला वर्गा ताजा गोश्त मुनासिब कीमतां 100% दलाल भले लोग ते चंगी सर्विस चिकन लैम बीफ फ्री रेंज चिकन ऑर्गेनिक चिकन हड्डी वाला गोश्त हर किस्म दा बोनलेस गुर्दे कलेजी बटेरे ताजा मछली देसी मुर्गी बलैती कुकड़ सिरी पाए बस बंदा ल्याए पकाए ते खाए मेहमानां नु बुलाए ते सवाब कमाए
2: बस ते फिर हुन मैं अपने अम्मी अबू ते भैन भरावां नु बुला लनी
1: आ मैं मेहमानां दा किया सी
2: की किया जे फिर आख्यो
1: जी कुछ नहीं बचाईयो मेरे आ मौला
0: ये दो तो ऐसे ही लगे रहेंगे आप जाइए हाजी सोबत मीट एंड चिकन इनसाइड खादिम सुपर से 1 ब्लैक रोड बर्कवी हडर्सफील्ड मंडे टू सैटरडे 9 टू 7 एंड संडे 10 टू 6 एचएमसी अप्रूव्ड 100% हलाल टेलीफोन 01484456257 दैट्स 01484456257
3: हाँ भाई बच्चों कल का सबक याद है
4: हाँ जी याद है
3: चलो सुनाओ फिर सोना चाहिए
4: हाँ जी चाहिए
3: चांदी चाहिए
4: हाँ जी चाहिए
3: कहाँ से लोगे
4: चाचा जूलर्स
3: फिर से बोलो
4: चाचा जूलर्स
3: चूड़ी कंगन जुमर बिंदिया छल्ला पायल हार पंजा जल्दी बताओ कहाँ से लोगे
4: चाचा जूलर्स
5: केड़ी ऑफर लाइया वहाँ सानू भी तो दसो
6: तो फिर सुनिए चाचा जूलर्स की ऑफर यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू
7: चाचा ज्वेलर्स ओपन मंडे टू सैटरडे 11:30 AM टू 6:30 PM 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX1 4NE टेलीफोन नंबर 01422342553 गेट डाउन देयर फॉर सम ग्रेट बार्गेन्स
8: जागते रहना
9: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
8: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
9: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
8: हाँ ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
9: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
8: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
10: चाय चाहिए तो फिर
4: गो चाय
10: कभी भी चाहिए तो फिर
4: गो चाय
10: दिन को चाहिए रात को चाहिए हर वक्त चाहिए तो फिर
4: गो चाय
11: need a proper chai fix for when you're on the go skip the queue and head to go chai serving the people's favorite kadak chai creamy kashmiri chai coffee and much more made fresh at the touch of a button perfect taste perfect temperature and hard to beat on price available 24/7 find go chai at your local petrol station for exact locations visit gochai.co.uk Go chai, proper chai, anytime.
12: कहते हैं साथियों कि ये आलम शौक का देखा न जाए वो बुत है या खुदा देखा न जाए ये आलम शौक का देखा न जाए वो बुत है या खुदा देखा न जाए ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए अहमद फराज की कुछ शायरी थी

की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए। अपनी मिट्टी अपनी छांव क्यों प्यारी है,

साथियों कहा जाता है कि आजकल जैसे लोग वॉक नहीं इतना कर सकते बस किसी बीमारी की वजह से या चलने में उन्हें दिक्कत होती है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेचर में निकलना और वॉक करना कितना ज़रूरी है कोविड के दिनों में लोग जो हैं वो वॉक करते थे एक डिस्टेंस पे एक साइड पर वॉक करते थे तो इसीलिए एक शख्स था उन दिनों जो कि वेलबींग ट्रेल उसने शुरू किया एक पोस्टर लेकर वो जहाँ

ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह थे वहाँ पे वो खड़ा होता था तो अब पूरे यूके में एक वुडलैंड वॉक जो है वो बनी हुई है जो कि एनजाइटी और इन चीज़ों को कट डाउन करती है कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि आप 3-3 माइल एवरी डे जो है वो चलें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए और जो गुड क्वालिटी इस वॉक की हो कि आप नेचर से किस तरह से कनेक्ट करते हैं ख़ुद को और किस तरह से सारा उस आउटसाइड की जितनी भी वो चीज़ें हैं उनको आप इंजॉय करते हैं चाहे परिंदों की आवाज़ें हैं कहीं झरना बह रहा है कहीं हवा जो है वो पत्तों को पत्तों की आवाज़ आ रही है ये सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं नेचर के साथ इंटरेस्ट के बारे में वेलबींग किस तरीके से वाइडली ग्रो होती है एनएचएस का जो है उसके बारे में भी लिखा गया है कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं एनएचएस के ऑलमोस्ट वेस्ट मिडलैंड्स में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया अपने पेशेंट्स को ओवर 100 डॉक्टर्स ने कि नेचर वॉक जो है वो पार्ट ऑफ सोशल एक होनी चाहिए सोशल प्रिस्क्राइबिंग स्कीम में ये शामिल होना चाहिए और ये स्पोर्ट है उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया कि जिसमें वो एक्सपीरियंस करें अपने स्ट्रेस को ख़त्म करें लोनलीनेस को ख़त्म करें और माइल्ड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो होते हैं किसी भी इंसान के उनको थोड़ा सा लेस करने के लिए ये वॉक्स जो हैं वो अरेंज की गई हैं पूरे यूके में वुडलैंड वॉक्स और ये वाकई कोरोना के दिनों में अगर आपको याद हो कि ये चीज़ें काफ़ी लोग जो हैं वॉक के लिए निकल जाते थे क्योंकि ड्राइविंग जो है वो भी कम थी तो बहुत अच्छा लगता था 2023 में ये डिज़ाइन लॉन्च हुआ ये जो प्रोजेक्ट था जो कि डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू लोग हो रहे थे कई लोग जो हैं वो उनके लव वन दुनिया से चले गए और इसलिए ये चीज़ें जो हैं अब एक वॉकिंग ट्रेल बन गई है जो कि इंजॉय करें आप अपने लोकल काउंसिल वेबसाइट पर जाकर देखें कि आपके अपने शहर में कौन कौन सी हैं वेकफील्ड ड्यूसबरी इन जगहों पर काफ़ी इस तरह की वॉक्स जो हैं वुडलैंड वॉक्स वो उन्होंने की हैं साइकिलिस्ट रूट भी हैं कैनाल साइड वॉक्स जो हैं वो भी हैं जो कि वाकई जब आप नेचर में निकल के वॉक करें जो भी आपके जहन में कोई प्रेशर होता है किसी बात का फिक्र तकलीफ़ वो सारी जो है वो आपके शोल्डर जो है हल्के होकर घर वापस आते हैं और इंजॉय करते हैं वॉक सो जो है ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी और बहुत घंटों की अगर आप 15 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वॉक जो है वो करें अगर एक साइड 15 मिनट्स 20 मिनट्स है तो फिर आधा घंटा 40 मिनट्स जो है वो हो जाते हैं और डिपेंड करता है कि आप स्लो वॉकर हैं फास्ट वॉकर हैं वॉक वैसे इंजॉय करनी चाहिए बहुत ज़्यादा तेज़ चल कर नहीं जो हल्का पेस होता है वॉक में उसके साथ इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है और आप नेचर का भरपूर अपने अंदर जो है उसको उसके अंदर सोक इन हो सकते हैं लेकिन जब आप तेज़ वॉक करते हैं तो लगता है कि आप बस फिज़िकल एक्टिविटी मतलब ये है वॉक करने का कि बाहर की नेचर के साथ आप किस तरह से कनेक्ट होते हैं

0: हुए थे।
1: पीचेस एंड क्रीम खाने का दिन है। डिजर्ट, आज की डिजर्ट सब लिसनर्स के लिए होगी पीचेस एंड क्रीम। और साथियों, कभी कभी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत हादसात होते हैं, बाज़ वाक़ियात ऐसे रोनुमा होते हैं कि उस वक्त हमें लगता है कि बहुत ही ट्रेजिक बात हो गई है, लेकिन फिर आगे ऐसा ऐसा जैसे टाइम जाता है तो पता चलता है कि ये क्यों रोनुमा हुआ, ये चीज़ ऐसे, ये हादसा, ये इत्तेफाक। इसी तरह से एक इंसान ने, एक मर्द ने एक खातून को अपनी किडनी डोनेट की। हुआ कुछ ऐसे कि 2004 में एक लेडी हैं, स्विनबर्न में रहती हैं, उनके डोर के ऊपर एक नाक हुआ। वो गई, दरवाज़ा खोला तो पता चला कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़े हैं और उसको एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज़ बता रहे हैं कि कार क्रैश में तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है। उस वक्त ये जो खातून थी, इनकी ऑलरेडी एक किडनी फेलियर हो चुका था और डायलिसिस के ऊपर थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि पुलिस केस था और आना जाना और बातचीत होनी जो थी, इंट्रैक्शन वो था। तो इस पुलिस ऑफिसर ने अपनी किडनी जो है वो इस लेडी को डोनेट की और फिर अपनी जो पुलिस जॉब है वो भी गिव अप कर दी। बाज़ुकात ज़िंदगी में बड़े हसीन हादसात होते हैं, हसीन इत्फाकिया मुलाकातें होती हैं और फिर वो मुलाकातें जो हैं वो आगे तक बढ़ जाती हैं। 21 ईयर ऑन हो चुके हैं इनकी फ्रेंडशिप को और फर्स्ट किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट हुई, फिर सेकंड वाली का ऑपरेशन हुआ और इस तरह से अब ये एक हैप्पी एवर आफ्टर कपल की तरह रह रहे हैं। कभी कभी स्ट्रेंजर भी अपनों से भी आगे हो जाते हैं और अल्लाह ताला है किसी के दिल में कुछ दूसरे के मतलब फीलिंग्स जो है वो डाल देते हैं।

ज़रूरी तो नहीं कि किसी की अखियाँ ही सुरीली हों तभी ये बात हो, बाज़ों का सुरीली अखियों के बगैर भी ये बातें जो है इत्तफाक़ किया खूबसूरत हादसात रोनुमा होते हैं।

सुरीली अखियों वाले कभी सुना दे अखियों से आंखें बोलती हैं। और यहाँ पर रेडियो संगम पे हम इस वक्त बोल रहे हैं साथियों, वक्त हुआ चाहता है 2:15। मैं हूँ आसमा मुखल, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल और अस्सलाम वालेकुम। साथियों आपका और हमारा साथ 3 बजे तक रहेगा और आपके मैसेजेस का बेहद शुक्रिया सुल्ताना जी, आपने मैसेज किया, जफ़र आपने किया कि लेडीज़ जो है जो फर्स्ट आवर में साज के साथ था, हम बातचीत कर रहे थे प्रेशियस चीज़ों की, कि लेडीज़ जो है वो मनी मेकिंग मशीन तो आपने लिखा नहीं, आपने लिखा लेडीज़ इज़ मनी मशीन, पता नहीं शायद कहना चाहते हैं कि पैसों को ज़्यादा पसंद करती हैं या पैसे वाला इंसान उनको चाहिए होता है ज़िंदगी में। ऑब्वियसली ये जितनी जो शॉप्स हैं ही लेडीज़ के लिए तो खुलती हैं, लेडीज़ जाएं और शॉपिंग करें, ऑब्वियस सी बात है ये। और साथी पहले हम डिस्कस कर रहे थे पेन के बारे में, लेटर लिखने के, मेरी नज़रों से अभी एक स्टोरी जो है वो गुजरी और ये जो आवर है अपलिफ्टिंग स्टोरीज़ का आवर है। ये कहते हैं कि जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, टीम चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब कुछ जो है हो रहा है और पता नहीं होता कि बच्चे जो हैं वो किस स्ट्रेंजर के साथ मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लवली इंट्रैक्शन जो है वो पेरेंट्स ने शुरू किया एक जगह पे, और वो छोटी बच्ची है 9 ईयर की। कितना मौक़ों पर हम पेन और पेपर लेकर बैठते हैं और लिखते हैं, आजकल इस टाइम में नहीं होता है, बहुत कम होता है। बच्चे भी इवन जो है बहुत ज़्यादा टाइम अपनी डिवाइसेस के ऊपर, टीवी डिमांड होती है उनकी, उसके ऊपर खाना खाते वक्त भी जब तक टीवी उनका बेस्ट 3 साल के बच्चे का कार्टून नहीं लगेगा, कोई उनकी फेवरेट चीज़ नहीं होगी, वो खाना नहीं खाएंगे। सो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को एक पहले के राइट और जो फाउंडेशन होती है ज़िंदगी की, उस ट्रैक पर लाने की कोशिश जो है वो करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट था प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स का, लेटर्स जो है वो स्टाफ को लिखने, मेंबर ऑफ स्टाफ को लिखने। और इस प्रोजेक्ट में जो था वो मकसद ये था कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के साथ इंट्रैक्शन जो है वो राइटिंग के थ्रू किस तरह से हो, किस तरह से वो अपनी विपता जो है एक दूसरे को सुनाएं, कि ये जनरेशन जो है एक 9 ईयर ओल्ड और दूसरी वो क्या जो है वो सोचती है, किस तरह एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। और इसी तरह से पेन पाल स्कीम जो है वो शुरू हुई, काफ़ी एक्साइटिंग स्कीम थी। और जो मम थी वो कहती हैं कि शी वाज वेरी एक्साइटेड, तो उसकी 9 साल की बच्ची जो है वो इस स्कीम में उन्होंने उसको किया। और उसका जो लिंक है वो 76 ईयर ओल्ड पर्सन के साथ हुआ, लेडी के साथ हुआ जो कि, और उसके अलावा एक 75 ईयर ओल्ड के साथ उनकी वाइफ है, उसके साथ भी हुआ। इस तरह लेटर, ख़त लिखने का जो तबादला था वो शुरू हुआ। और कहते हैं कि दोनों की जिंदगियों में जो 9 साल का बच्चा था लड़का, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, उसकी ज़िंदगी की अपकमिंग स्टोरीज़, और 76 और 75 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड वाइफ की जो एक्सपीरियंस थे, वो किस तरह से विजडम जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इन खतूत की बिना पे। अब वो बच्चा जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और वो अपने फ्री टाइम में इनको जो है वो लेटर लिखता है, जो भी हालात हाजरा होते हैं उसकी ज़िंदगी की, जो भी मसरूफियात हैं, स्कूल, स्टडी, कुछ भी, और जो उनका होता है वो उसको लिखते हैं। और इस तरह से ये तबादला ख़त कतावत का जो है वो हो रहा होता है।
बहुत अच्छी एक स्कीम है लेकिन इसमें ये बात है कि ऐसे ही बच्चों को किसी भी रैंडम पर्सन के साथ नहीं उन्होंने इंटरेक्ट कराया एक स्कीम है उसके तहत पेरेंट ऑब्जर्वेशन में बच्चे जो हैं ये काम करते हैं जैसा कि बहुत सी नर्सरीज जो हैं वो बच्चों को अपने लोकल डे केयर सेंटर्स में लेके जाती हैं वहाँ पर वो जो ओल्डर पीपल हैं उनके साथ बैठते हैं उनके साथ इंट्रैक्शन होती है स्टाफ वहाँ बच्चों के साथ वहाँ मौजूद होता है तो एक बहुत अच्छी ये बस स्कीम्स जो हैं बहुत सी सिटीज़ में ये शुरू हुई हैं कि किस तरह से बच्चों को इन गैजेट से थोड़ी देर दूर रखकर जो ज़िंदगी की एक दूसरी तस्वीर है जो असली तस्वीर है एक्चुअली फाउंडेशन है बुनियाद है इंसानों की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करना बातचीत करना ओल्डर जनरेशन का बिल्कुल एक 10-6 साल के बच्चे के साथ बातें करना और वो बच्चा जो है वो ग्रैंड पेरेंट और कहते हैं कि वो लोग जिन जो इन होम्स में हैं ओल्डर जनरेशन सीनियर सिटीजन्स जो हैं तो उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए वेल बीइंग उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि बहुत सी जगहों पर हो रहा है हमारे करीब ही हरिसवील के करीब एक टाउन है वहाँ भी ये चीज़ जो है वो होती है सो इट्स सो नाइस ये अपलिफ्टिंग स्टोरीज जो होती हैं इनसे इंसान बहुत कुछ सीखता है और अगर कर सकें आप इस तरह से अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके जो हैं बैक होम है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान या किसी भी और दुनिया के मुल्क में तो आप बच्चों से उनको ठीक है फेस टाइम भी होता है वीडियो कॉल्स भी होती हैं लेकिन अगर बच्चों से आप लेटर भी लिखाएं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है एक नया स्किल है लेटर लिखने का कि किस तरीके से लेटर को शुरू किया जाता है एड्रेस किया जाता है उनकी आगे एजुकेशन में ये चीज़ें जो हैं वो काम आ सकती हैं इट्स अ वेरी गुड स्टेप I am impressed कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है भाई

0: हर सिर की फिजाओं में बस एक खुशबू 30 बरसों की मोहब्बत जायकों की एक कहानी स्नूटीज पिज़्ज़ा बार जहां हर लुकमा एक एहसास बन जाए 30 बरस बीत जाने के बावजूद आज भी वही दिल को लुभाने वाला जायका आपके लिए लेकर आए हैं शानदार कलेक्शन ऑफर
1: 2 12 inch pieces for £12 3 12 inch pieces for £17 2 100% Angus beef smash burgers for £12 2 fresh chicken fillet breast burgers for £12 and 2 loaded fries for £10 also finally 3 tender meals just for £5
0: chahe sham ho ya raat ki mehfil har lamha ban jaye khaas har zaika ban jaye yaad aaye zaikon ki is mehfil mein shamil hoon Snooty's pizza bar jahan har bar dil kahe bas yahi hai asal maza
1: Snooty's Pizza Bar, located on 6062 Wakefield Road, HD1 3AJ. Ring 01484 430022 and 01484 519 631. Open 7 days a week, 11 a.m. till 12 a.m.
2: Jagte rehna, jagte rehna.
3: So jaunga to kya hoga, bhai?
2: Agar so jaoge to paratha stop ke mazedar jitne bhi parathe hain, un sab se reh jaoge, kyunki paratha stop leke aa raha hai. Aloo ka paratha, gobi ka paratha, mooli ka paratha, keema paratha, paratha pizza, paratha donor, paratha टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
4: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
5: बॉबी फैशन इज ऑल सेट टू मेक योर स्पेशल डे रिमार्केबल स्पेशलाइजेस इन ब्राइडल वेयर ग्रूम Wear and children's clothing for all occasions.
6: Visit Kare Bobby Fashion. Mention Kare Radio Sangam Kanam or Paye £100 ki chute on bridal wear.
5: Also, more discounts are available on bridal wear with party wear packages. Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
6: Amazing Asian clothing. Also, made to measure orders with perfect fitting.
5: Special offers for Eids are also available now with a large collections of matching jewelry, bangles, and much, much more. Bobby Fashion. At 312A Bradford Road, Huddersfield, HD1 6LQ.
6: Call 01484 769926.
5: Bobby Fashion, fashionable living.
7: And now with a free gift with every purchase.
8: Kya aap अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
9: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
10: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
11: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
9: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
8: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
9: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
12: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
13: Abhi call kijiye 01484-549947.
8: Training will be provided.
14: Welcome back, Sathiyo. Sun rahe hain aap Radio Sangam. और अपलिफ्टिंग न्यूज़ के बाद देखते हैं कि हमारे लोकल हडर्सफील्ड में जो लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो हो रहा है बैटले थिएटर में तो वहाँ भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपके लोकल शहर में यॉर्कशायर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं क्योंकि मई और जून में ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हो रही होती हैं और जाना चाहिए कभी कभी इन जगहों पर देखना चाहिए कि हमारे जो टाउन हैं उनमें नया क्या हो रहा है क्या कहाँ पर शाम जो है बिताई जा सकती है फ्रेंड्स वगैरह के साथ और फिर कभी कभी दिल भी तो चाहता है कि उनसे मिलो

कहते हैं कि आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि जैसे कभी आशना न थे। अच्छा जी, ऐसे भी होता है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कह गए हैं तो हुआ होगा या होता होगा। ये तो अपने अपने एहसास की बात है कि कोई कैसे महसूस करता है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

0: 218 Queens Road, Halifax, HX1 4NE. Telephone 01422-485-679. Email कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com. The Safe Deposit. For all your valuables, extra security biometric finger scanners, safe, secure deposit boxes, insurance cover available, 1 year complimentary free insurance, 24/7 alarm and camera monitoring system with multiple size boxes. Opening offer 10% off if you mention Radio Sangam. Open your box today. Open Monday to Saturday, 11:30 a.m. to 6:30 p.m. That's 218 Queen's Road, Halifax, HX1 4NE. Telephone 01422 485 679. The Safe Deposit Centre, Halifax, inside Chacha Jewelers.
1: हाँ भाई बच्चों, कल का सबक याद है?
2: हाँ जी याद है.
1: चलो सुनाओ फिर. सोना चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए.
1: चांदी चाहिए?
2: हाँ जी चाहिए.
1: कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स.
1: फिर से बोलो.
2: चाचा ज्वेलर्स.
1: चूड़ी, कंगन, जुमर, बिंदिया, छल्ला, पायल, हार, पंजा, जल्दी बताओ कहाँ से लोगे?
2: चाचा ज्वेलर्स. चाचा ज्वेलर्स.
3: केड़ी ऑफर लाइया वा, सानू भी तो दसो.
4: तो फिर सुनिए चाचा ज्वेलर्स की ऑफर. यहाँ पर हाथ से बनी हुई चूड़ियों की बनवाई बिल्कुल मुफ्त है, और शादियों के जेवरात की बनवाई आधी कीमत में, और चांदी के कोके की कीमत 50 पैनी से शुरू.
5: चाचा ज्वेलर्स ओपन.

0: 2553. Get down there for some great bargains.
1: जागते रहना, जागते रहना.
2: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई?
1: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं, उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कीमा पराठा, पराठा पिज़्ज़ा, पराठा डोनर, पराठा टिक्का और इसके साथ साथ ठंडी लस्सी, कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी.
2: स्टॉप. अरे वाह, पराठा स्टॉप.
1: हाँ ना, इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट.
2: बस मैं अब नहीं सोऊंगा.
1: पराठा स्टॉप, 9 ब्लैक रोड, हरिसफील, HD15HU. ओपनिंग सून. टेलीफोन 01484542700.
3: इंसान बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें. यहां पर आते हैं हम, यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट. रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करें. रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं. Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

वेलकम बैक साथियों, सुन रहे हैं आप रेडियो संगम और बस थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे प्रोग्राम 3 बजने तक। मौसम के हवाले से बात करें अगर तो जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, इसी तरह डाइट भी चेंज करने का जी चाहता है। आज मैं आपको मैंगो साल्सा बनाने का बता रही हूँ कि कलरफुल मैंगो साल्सा रेसिपी स्वीट स्पाइसी या बारबेक्यू साइड पर हो तो उसके लिए भी बेहतरीन है। इसके लिए आपको एक खट्टा मीठा मैंगो चाहिए और बेल पेपर चाहिए, सिलेंट्रो जिसको ग्रीन धनिया होता है वो चाहिए आपको, रेड अनियन चाहिए, लेमन और थोड़े से अगर आप पसंद करते हैं ग्रीन्स लीव्स जो हैं स्पिनच की वो चाहिए। इन सब को काटने वाली चीज़ों को क्यूब्स में काट लें, मैंगो बेल पेपर अनियन को सबको मिक्स करके ऊपर सिलेंट्रो डाल लें, लेमन जूस जो है वो जेंटली और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है उसको मिलाकर टॉस कर लें और इसके साथ ये बहुत ही एक जेस्टी किस्म का सालसा जो है वो तैयार है। आप इसको नैचोस के साथ या छोटे राउंड नैचोस जो कि लेंटल्स वगैरह के बने होते हैं उनके साथ अगर आप मंच करें बिफोर मेन मील तो बहुत अच्छा लगेगा।

साथियों इस गीत के आखिर में हम आपसे इजाजत चाहेंगे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है जिन साथियों ने हिस्सा लिया आप सभी का बेहद शुक्रिया अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और साथ जो है वो अब प्रोग्राम पेश करने आएंगे देखते हैं कहते हैं कि मैं हंसता हूं तो खुश भी मैं हंसता हूं तो वो भी खुश होता है तस्करा आईना गा कर कर रहा हूं इंसान का नहीं हमारी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़ बाय

एक्चुअली आप मुझे बताएं कि ये डीजेस के नेम्स होते हैं, नाम होते हैं ना डीजेस के, ये कैसे अजीब अजीब नाम होते हैं इनके यार. अभी ये डीजे फ्लो था, डीजे फ्लो DJ Flow. Now we got Honey Singh and we got Honey King now as well. The next track is the Shisha Anthem, Zain Siddiqui featuring Honey King, also known as HK. In fact, let me know what you think of nicknames. हमे तो जो खाने से related nicknames होते हैं हमें वो पसंद हैं. जैसे लड्डू हो गया, जलेबी हो गया, मेरा गुलाब जामुन.

0: you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ राबता कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिवरसेज WF15 8HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
4: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस
5: سن ذائقہ الموت ہر نفس کو چکنا ہے موت کا ذائقہ قبر کا کتبہ یعنی ہیڈ سٹون بنوانا ہو یا قبر کو پختہ کرانے کا ارادہ ہو یعنی کراس راؤنڈنگ مدنی میموریل ڈیوزبری گرانیٹ اور مابل سے بنے ہیڈ سٹون اور کراس راؤنڈنگ خوبصورت مضبوط پائیدار اعلی کوالٹی اور گارنٹی کے ساتھ اور نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
6: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924 6771 Mobile 07971092790. Please remember, branches in Birmingham, Manchester and Sheffield also.
7: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Singham team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.
8: Lock it in and rip the knob off.
9: Excuse me, my iPhone doesn't have a knob.
8: Radio Singham, 87.9 FM.

0: Have you had an accident driving your taxi? Has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760 or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
2: जागते रहना जागते रहना
3: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
2: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूरी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सिलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
4: Bobby Fashion is all set to make your special day remarkable specializes in bridal wear grooms wear and children's clothing for all occasions
5: विजिट करें Bobby Fashion मेंशन करें रेडियो संगम का नाम और पाइए 100 पाउंड की छूट ऑन ब्राइडल वेयर
4: आल्सो मोर डिस्काउंट्स आर अवेलेबल ऑन ब्राइडल वेयर विद पार्टी वेयर पैकेजेस Bobby Fashion specializes in planning all your party wear with matching and desired colored themes for weddings.
5: Amazing Asian clothing, also made to measure, orders with perfect fitting.
4: Special offers for Eids are also available now, with a large collections of matching jewellery, bangles and much, much more. Bobby Fashion at 312A Bradford Road, Huddersfield HD1 6LQ.
5: Call 01484 769926.
4: Bobby Fashion, fashionable living.
0: And now with a free gift with every purchase.
6: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
7: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
8: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
9: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
7: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
6: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
7: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
10: यस Join the UK's most followed Asian radio station, Radio Sangam.
11: Abhi call kijiye 01484 549947.
6: Training will be provided.

0: अच्छा इतनी चोरी होती है आजकल सोना रखूं तो रखूं कहां
1: इसमें घबराने की क्या बात है द सेफ डिपॉजिट सेंटर है ना 218 क्वींस रोड हैलिफैक्स HX14NE टेलीफोन 01422485679 ईमेल कीजिए उनको thesafedeposit@yahoo.com the safe deposit for all your valuables extra security biometric finger scanners safe secure deposit boxes insurance cover available 1 year complimentary free insurance 24/7 alarm and camera monitoring system with multiple size boxes opening offer 10% off if you mention Radio Sangam open your box today open Monday to Saturday 11:30 a.m. to 6:30 p.m. that's 218 Queen's Road Halifax HX14NE telephone 01422 485 679 the safe deposit centre Halifax inside Chacha Jewelers
2: जागते रहना जागते रहना
3: सो जाऊंगा तो क्या होगा भाई
2: अगर सो जाओगे तो पराठा स्टॉप के मजेदार जितने भी पराठे हैं उन सब से रह जाओगे क्योंकि पराठा स्टॉप लेके आ रहा है आलू का पराठा गोभी का पराठा मूली का पराठा कीमा पराठा पराठा पिज्जा पराठा डोनर पराठा टिक्का और इसके साथ-साथ ठंडी लस्सी कड़क चाय और स्पेशल हलवा पूड़ी
3: स्टॉप अरे वाह पराठा स्टॉप
2: हां ना इसीलिए कहा जागते रहना और पराठा स्टॉप की ओपनिंग पर खसूसी नजर रखना क्योंकि पराठा स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट टू सेलेक्ट
3: बस मैं अब नहीं सोऊंगा
2: पराठा स्टॉप 9 ब्लैक रोड हडर्सफील्ड HD15HU ओपनिंग सून टेलीफोन 01484542700
4: थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस इज हियर टू सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484-234-095 today. Kirkley's Council Wellness Service. Quit for good.
5: Roton ko asane wala, dilo ko milane wala. Radio Sangam 107.9 FM.

0: क्या आपका अपनी टैक्सी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी आमदनी उससे मुतासिर हुई है क्या आप दोबारा जल्द से जल्द अपने रोजगार पर वापस जाना चाहते हैं तो आप आज ही फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड से رابطہ कीजिए वो आपके लिए क्रेडिट पर गाड़ी हायर करते हैं वो आपको प्लेटेड टैक्सी भी प्रदान करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द रोड पर वापस आ सकें अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपके लिए £3,000 तक रेफरल फी अदा करते हैं वो प्राइवेट गाड़ी भी हायर करते हैं प्राइवेट गाड़ी के रेफरल के लिए £1,000 तक अदा करते हैं आज ही हाजी शकील के साथ رابطہ कीजिए 07977317760 और विजिट फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस लिमिटेड मोहम्मद फराज एंटरप्राइज सेंटर 633 हैलिफैक्स रोड लिविसेज WF158HJ नंबर मत भूलिएगा 07977317760
1: फास्ट ट्रैक सॉल्यूशंस वी गारंटी टू रिपेयर योर व्हीकल्स विद इन 4 वीक्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन
2: थिंकिंग अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग द कर्कलीज काउंसिल वेलनेस सर्विस इज हियर टू सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे If you're ready to stop smoking, our friendly team can help. We offer free stop smoking support, including patches, vapes and gum, to help reduce cravings and make quitting easier. Stopping smoking improves your health, protects your family and saves you money for the things that really matter. And with our support, you're 3 times more likely to quit successfully than doing it alone. Getting started is quick and simple. Visit kirkleyswellnessservice.co.uk or call 01484-234-095 today. Kirkley's Council Wellness Service. Quit for good.
3: इंसान बहुत मेहनत बहुत कोशिशों और लगन से अपना बिजनेस खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट करें यहां पर आते हैं हम यानी रेडियो संगम की एडवर्टाइजमेंट रेडियो संगम का बहुत बड़ा प्लेटफार्म यूज करें रेडियो संगम पर एडवर्टाइजमेंट करें और अपने बिजनेस की आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाएं Brilliant advertisement opportunities and packages are available. Contact Radio Sangam team now on 01484-549-947. That's 01484-549-947.

0: you had an accident driving your taxi, has your income been affected? Need to get back on the road fast? Then contact Fast Track Solutions Limited, who are credit hire vehicle specialists. Fast Track Solutions will provide you with a plated taxi and make sure that you're back on the road fast. If you refer a friend who has been affected, then you could be entitled to up to £3,000 in a referral fee. We also deal in non-taxi vehicle hire. Refer a friend for a non-taxi hire and you could be entitled to a £1,000 referral fee.
1: We guarantee to repair your vehicle within 4 weeks, subject to terms and conditions.
0: Contact Haji Shkil anytime on 07977 317760
2: or visit Fast Track Solutions Limited, Mohammed Faraz Enterprise Centre, 633 Halifax Road, Liversedge, WF15 8HG.
3: लानी का
4: अरे आज तो बहुत खुश लग रहे हैं ये लानी का कौन है
3: तुम भी हर वक्त शक करती रहती हो आज मैं और मेरे दोस्त लानी का रेस्टोरेंट हैलिफैक्स खाना खाने गए थे
4: अच्छा लानी का वो वाला जहां 10 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं
3: सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं उनका बुफे भी कमाल का है और जानती हो वो शादी मेहंदी और बर्थडे बुकिंग्स भी लेते हैं
4: वो पैसे खर्च करके आए होंगे
3: कंजूस कहीं की उनका बुफे मंडे टू थर्सडे $22.99 फ्राइडे टू संडे $24.99 अंडर 10s $11.99 अंडर फॉर्स फ्री
4: तो इस बार मेरी बर्थडे भी लानिका में होनी चाहिए
3: क्यों नहीं वो है भी हमारे करीब पेलन न्यू रोड हैलिफैक्स HX14QE और हर रोज 4 से 11 तक खुले हैं जरा नंबर मिलाओ 01422613613 अभी बुक कर देते हैं
5: क्या आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं
6: क्या आप 52 कंट्रीज में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं
7: क्या आप अपनी फैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं
8: क्या आप टेक्नोलॉजी को और सीखना चाहते हैं
6: क्या आपको मीडिया में काम करने का शौक है
5: और क्या आप भी उस हॉट सीट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां से हमारे प्रेजेंटर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं
6: तो सुनिए रेडियो संगम इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर प्रेजेंटर्स
9: यस जॉइन द यूकेस मोस्ट फॉलोड एशियन रेडियो स्टेशन रेडियो संगम
10: अभी कॉल कीजिए 01484549947
5: ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड